गुरु गोविंद सिंह साहिब जमाल गुरु गोविंद सिंह जौ तन चीर अंग न मोरो पिंड पर तो प्रीत ना तो

साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। बेहागड़ा महला चौथा, ते नेत्र पले प्रवान है मेरी जिंदड़िए। जो साधु सतगुर देखे राम, ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए।

गफल अपने हाथों बेसुमार यथा अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जुगो जुग अटल दीन और दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। जो अपने पावन चरण कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है, आओ गुरु प्यार वालेओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो वो चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रखे दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहत सरबत संगत मिल करके उचारन करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

कार्य सब सवार नाम सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाले।

जियांद्र जियो सुख जाला सब तेरे बस तेरा कृपला तेरे कर आनंद बधाई तुत कर मान मता तेज अपना आप जल सर्वकला भरपूर तिसे जत कथा नानक दासन।

नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी तेनादिक माई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरु द्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत

जो जी सके आप जियांदा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई वाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन ज्यौण दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे।

दोहरा गया भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने हो, जो प्रभु

खण पाहे वड्डा ना होवै घट न जाए ना ओह मरै ना होवै सोग दिंदा रहे ना चुकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जैना देना करके कीती रात खसम विसारें ते कम जात नानक नावे बायसनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वड़े रे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवें उदम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक सवाही ठाकुर काहे मन पौ करया ऊडे ऊड़ आवे सै कौसा तिस पाछी बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वही सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वह संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा
एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवहें तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्या वहीं हर त्या वहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैना हर ते आया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहि जपहि बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरे सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दहें सोई हो पाई रहो, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिस नाव कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या,
मूरख मुगदा जन्म पया प्रणम तृणानक तिनकी शरणा जैना तू नाही विसरया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काय तेरे किते ना काम मेल साध संगत पाजे केवल नाम श्रंजाम लाहक पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जब तप संजम धर्म ना कमया सेवा साध न जन्यार राया कोह नानक अमनीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमया सेवा साध ना जन्या हर राया कोह नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करो है दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ मुहे बचाब हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवें करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबेरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो स तुम ते पाऊं सेवक सिखा मारे तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये आवाद मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख ले ओ मुहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंद जच्छण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पलमो बद कियो घड़गड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्न, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा। जब आकर्क कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे। तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड़े उचारत पिदा, जाको पेव न बाबत बिदा। ताको कर पाहुन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न भिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुपस रूपा, रंक पहयो राव कहीं पूपा। अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अगैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंप, आजुगै स्रूप स्वयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो वारे असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता। जे आस्तु जे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को इक बारते है, ताकि काल निकटन है। है रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह शवै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसते

आप हाथ दे ले हो उबारी सर ठोर म हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओवारी सर ठोर म हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरन अनेक कहे मत एक नाम मान्यो सिमृत शास्त्र भेद सब है बहुभेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो हे बखने दोहरा सगल दोर को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार महंगे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार महंगे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया से सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगाबो हरि केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा करज सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनोम सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या ना ही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख बने बसिया जिनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो सुनतो शब धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित कर सुपगे क
कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तां सुख होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनहौ बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बोनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे

मंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय।

नाही मैनों जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही अपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई।

मां तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा।

हर तन संचिय पाई, जय हलत पलत हर होए सखाई, रहाओ सतसंगति संग हर तन खट्टिया, होरत होरत उपाए हर तन किते न पाई, हर रत्ने का वापारिया, हर रत्न तन विहाज्ये, कच्चे के वावारिया, वाक हर तन लया न जाई, हर तन रत्न जवे हर माणक, हर तन्ने नाल अमृत विल्ले वत्ते, हर पगति हर लिवलाई, हर तन अमृत विल्ले वत्ते कबीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुट नहीं, हालत बालत हर तन्ने की भगता को मिली वड़ियाई, हर तन निर्भव सदा सदा अस्थिर है सच्चा, एओ हर तन अग्नि तस्करे पानी है, जमदूत किसका गवाया न जाई, हर तन को उचक्का नेड़ न आवई, जम जगाती डंड न लगाई, साकती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिना एक विख नाल न जाई, हलते विच साकत दोहिले पाए, हथों छुड़क गया अगे पालत साक, हर दर गए ढोई ना पाई, इस हर तन का शहो हर आप है संत, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन ने का कदे न आवई, जन नानक को गुर सो जी पाई, इस हर तन का शह हर आप है संत, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक को गुर सोजी पाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जिनको सो प्रसन्न नाम हृदय निवास, जिनको गुरु सो प्रसन्न, जिनको गुरु सो प्रसन्न दुर्त दरंतर नास। गुरु जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार, जिनको गुरु सो प्रसन्न शब्द लभव जल तार। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सख्यतो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग। सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने, अनभो नेजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने। जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अबरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस

0: तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। धर्म करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे। शब्द सार एक लिवलाई है, उन जाने को तेरा अपार। निरपो निरंकार अकथ कथन हार, तुझे बुझाई है परम पुले संसार। छूटो जूनी संगार जम को ना दंड काल, गुरमत त्याई है मन प्राणी मुगत विचार। एहनस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है।
1: हाँ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर, कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो। एक मुख रसना रसो जुग जोर कर, फुन मन बच क्रम जान, अनत दू जाना मान। नाम सो अपार सार तीनो गुर रिद तर, नल कव पारस परस काच कंचना होए। चंदना सुबास जास सिमरत अन तर, जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे। जी हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, राज जोग तखत दियन गुर राम दास। प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद, तारण मनुख जन कियो परगास। गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत, अगण देखत गत चरण कवल जा। सब विद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर राम दास।

लख तप प्रतीर्थों से जोग बेबान, लख सुरतन संग राम, रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

अपना अग्गे कमाणा अलमल खाई सरछाई पाई मूर्खन दे पत गवाई विण ना वे किस्ताई न पाई रह बिवाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी।